0: Rocky.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: दोस्तों नमस्कार, आदाब, उर्जू. आज प्रोग्राम हेत छे बेई एक फेरिस हाजर तुहंदिस खदमतस मंस. उम्मीद छे तुहे आसनो सन प्रोग्राम जरूर पसंद आमित. मैसेज छे मीनल पीर.
2: समयन मैन तरफतियम माय बरोत. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते हेलो.
1: मीनल जी, आज करवो इस गोड थिएटरस मतलब कात.
2: बिल्कुल रमेश जी,
1: वनान छे कशीर मंस लोक थिएटर यम करान ओस तिमन इस वनान बांड यम कम से कम शीतन गामन मज बसान ऐस मगर नचुन तो गिंदुन ऐस सिर्फ पंधनी गामन मज करा.
2: और दपान महाराजा रणबीर सिंह सिंध ब्रो ऐस न थिएटर करने च या गिनने च का खास मुहिम. रणबीर सिंह नोस उत्तर प्रदेश बैठे आए के लटे रास करन वेला नियमित यमो पन्ने कलाई हुन प्रदर्शन कशीर ते जेमकोर आई कोई असर छ ऐस वनस्ताम दमाल हिंदस नचनस मंस्त बांडन हिंजे कलाकारी मज उछान अमी यस शायद यमन रास कर दिवनान.
1: मीनल जी, पत वही में सदी मज ये स्कूल कॉलेज खुले तो यमन इदारन मज ते हेचन ड्रामाहन हज एक्टिविटी शुरू गसी. दोमी तरफ सरसी मुल्कस मज पारसी थिएटर चलन शुरू गोमत तो कशीर मज ते ऐस के नौजवान कलाकार यमो यम ड्रामा नेबर वुच मिते ऐस तो ऐस आज सूट बड़ मुतमई.
2: तबान रमेश जी, महाराजा हरि सिंह ने वक्त आओ गोडन्यूक एमेचुअर ड्रामेटिक क्लब बनामने यात्मस कलाकार पारसी थिएटर शैली मंस ऐस ड्रामा करान मगर कशुर ड्रामा हस म्यून लत्तो तामत्य तबज्जो ये ले आख फनकार श्री नंदलाल नानाहन लोक सत्यच कहावत या राजा हरिश्चंद्र युस्तमो पत स्टेजस पेटे पेश कर.
1: मीनल जी, तो है सतस अमयुक प्रदर्शन सब्दियो बान महल एकिस लक्टिस थिएटर्स में तो अमे अलाव आविये साहिबानन तल बेन जानत गिंदर ये गो वारिया पॉपुलर तो सक्सेसफुल थी तो लोको कोर आथ बड़ तारीफ ऐस्थो ड्रामा या थिएटर्स मतलब कट बात जेरी मगर गोड़ बोझदा हूँ पन इंसामीन अख खूबसूरत बर्थ.
2: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ पहले बोझ

0: मीनल जी, तो शो पता कि आजकल थिएटरस मुतलक कत बात करा।
1: बिल्कुल रमेश जी, अच्छी आसान जे साइनन सामिनन तान गसे थिएटरच पूर पूर जानकारी बातिन।
0: बिल्कुल जानकारी देता सीमन तो बे तिदिम होक जानकारी दपान कुनुशत सतवंधस मंज आये अभिनव भारती थिएटर ग्रुपस मंज मोतीलाल किम्मू ड्रामान हिंद अंबार पेश करद। अत मंज आये के खास ड्रामा निगारन हिंद ड्रामा पेश करद। यमो मंज मशहूर अस उपेंद्र नाथ अश्क, रविंद्र नाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, बंसी निर्दोष, मोतीलाल किम्मू तो पुष्कर नाथ भान सिंह ड्रामा। अमे अलाव आये हरीश चंद्र तारामती, शिव लगन फिरथुर, मंजिल निक, आकाश पाताल, हीरो मचाम वगैरह कर्न।
1: अभिनव भारतीय मंज के शख्सियत यमो पन्न अक मुकाम बनो तिमो मंज अस डॉक्टर रतन लाल शांत, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, रविशंकर केमू, सूरज रैना, अशोक कल्ला, नंसी गंजू, हीरा लाल राजदान, रियाज रफाई, जमन लाल हक्कू, त्रिलोकी नाथ वैष्णवी, सोहन लाल कौल वगैरह। किमो मंस रविशंकर केमू, सोहन लाल कौल, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, सूरज रैना छे वन ते कुन नत कुन तरीका आ थिएटर से जुड़े। अमे अलावा छे के अमेचर ड्रामा क्लब यमन मंस रंगमंच, संगरमाल, वसंत थिएटर वगैरह शामिल छे। कश ड्रामा हस मूल टाइम वक्त ते पोचर लेले मोतीलाल केमोहन लुक थिएटर ग्रुप या यत बांड पत्थर तवनान छे सुइत वाबस्तगी थ। खास तौर पर कशुर भगत थिएटर अकिन गाम येले केमो सबनी मन सिद्ध तकदीर हवस जोल गयम ते कोले गयम कांग ही ड्रामा टैगोर हालस मंस पेश कर।
0: कशुर ड्रामा हस मूल अके नव तरीको पोचर सीट बने अख ड्रामा फेडरेशन तम हर वरी ड्रामा फेस्टिवल करान यम किन ड्रामा कुनुशत शीतस पांचशीतस ताम कशीर मंज जिंद रूद। रंगमंचिक वारिया कलाकार युहुंद नाव हैन बगर रोजी ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो तिम गई मखनलाल सराफ, बिहारी काक, बंसी मट्टू, अशोक जालपुरी, शादीलाल कौल, आशा जारू, भारती जारू वगैरह यमो थिएटर आज तान जिंद थो मुझू। तो मीनल जी यस ड्रामा तो थिएटरस मतलब जानकारी यस ऐसे पन्न सामिन तान वात रहो।
1: बिल्कुल रमेश जी, तो ऐसे उम्मीद जे तिमन ते ऐसे पसंद आमुत इस के प्रोग्राम तो हम तिमन इजाजत।
0: बिल्कुल, मगर छुना सला नेरन नेरन भोजन हो अकबर।

बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया आप ते अस गल करा दे हे जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ तुंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदों राजे ने दिखिया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने का निर्णय ले लेता। उस राजे का नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग प्रदेश का नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हो गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े वड्डे बजुर्ग असीं सुनांदे ने, असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। ते इस कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गे इसी मंदरे का थां रखते हैं, इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहां ने, उनके बड़े बड़े महत्व ने, ते बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार हैं, बड़े मेल भाव करने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरी का उदाहरण है वह अज भी कुदे ना कुदे मेरे डुग्गर प्रदेश विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव दे रोंदे ने, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते ने, बड़े गे प्रेम करने रोंदे ने। ते मैं प्रार्थना करनी हां ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोगों च बने दागे रहे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिब आवे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: 7998877sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ली आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
4: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
3: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 4166182761 4166182761।
5: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
6: आहो जी, मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
5: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
6: एक बार आओगे ते बार बार आओगे।
5: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
6: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
7: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल, 2 लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394. Stephen Furniture ki dhamake dar festival season sale.
8: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
9: Par hun thonu car lain layi ready karange. Mortgage the King Girish Sharma.
10: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
9: Sab layi yaad rakho Girish Sharma. Pre-approval hi nahi, closing tak denge pura saath. Dealing with all banks.
10: Call 647-606-8110
9: or visit sharmamortgages.com.
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जाने पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
1: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसे यार यकीन ही नहीं होता
2: तेनू इधर तो यकीन नहीं होता तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक कटा सकदे ने
2: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
1: save on energy.ca/EAP

0: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,
0: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
1: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ,
0: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ,
1: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
0: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
1: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
2: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नू मिसेस आगा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नू।
3: मैं के अचन जी सलाम कहने
2: दिला नू टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तराने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गूंजन गे 24 जुलाई नू। तारीख नोट कर लो, 24 जुलाई। अपनी टिकटां अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नू कॉल कर सकते हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई। सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: what is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
4: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
5: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: टेक स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 4 37 655 1984।

0: आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो आपके कान खड़े जाते हैं, तो इसलिए आप इसको मिस ना करें, फंडिंग भी हासिल करें, आसान से कोर्सेज फुली ऑनलाइन, कहीं नहीं जाना आपने, फोन पे रील घुमाते हैं, फोन पे क्लास अटेंड करें, साथ में फंडिंग हासिल करें, आसान से कोर्स में लाइक एग्जाम्स नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, दैट्स इट।
1: जी ते लो जी मैं एक बार नंबर दे देनी सरांश नूं, तुसी कॉल करनी है यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तों, तुसी कीवें ग्रांट मिलनी है, केड़े केड़े कोर्सेज अवेलेबल हैगे है ना, हर एक चीज़ की जानकारी तुसी लै सकदे हो 437-264-3175 437-264-3175 ते गलबात करनी है, 437-264-3175 ते गलबात तुसी कर सकदे हो। ते सरांश जिहड़ी ग्रांट इन्हां नूं मिलनी है ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ?
0: गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे ही इसलिए रही है क्योंकि आप कहीं भी खर्च करें, कोई लोग उससे ग्रोसरी कर सकते हैं, कुछ लोग बैकहोम भेजते हैं, उनकी इच्छा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। और लाइक थर्ड, अब फैमिली खर्च पर डिपेंड करता है कि फंडिंग कितनी बनती है। अब हमें कॉल करेंगे, अब हम आपसे तीन चीजें पूछेंगे, आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे इनकम कितनी रही है 2024 में, अभी अकेडमी के चल रहा है 25-26, इसमें 24 का एनुइटी इनकम देखी जाती है। नंबर टू, मैरिड है या सिंगल है। नंबर थ्री, आपके किड्स कितने, अगर आप मैरिड हैं या फिर है ना, तो इसमें सिंगल मदर भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं है। सो इसमें ये तीन चीज से हम एस्टिमेटर पर डालते हैं गवर्नमेंट के, आपकी फंडिंग निकल के आती है कि ग्रांट कितना बनता है, लोन कितना बनता है। तो इसलिए आप हमें कॉल करें, असेसमेंट कराएं, इसमें कोई भी मीठी बातें नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, असली कागज लगते हैं, गवर्नमेंट को सबमिट हो रहा है आपका एनओए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें क्या कारीगरी है, कोई कारीगरी नहीं है तो कोई चलाकी भी नहीं है, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, कोई कुंडी नहीं है इसके अंदर।
1: ठीक है, तो सरांश अपना ऑफिस का एड्रेस बताएं और साथ में बताएं एक बार फोन नंबर। जी
0: हाँ जी, और इसमें एक और चीज, हमारी फीस जो है वो सिर्फ $199 या $499 है, कोई भी इसमें लाइक क्या कह सकते हैं चलाकी मत समझिए आप, हम कोई फंडिंग में डील नहीं करते जहां पे कैच होता है, सिंपल सी चीज है, आप एजुकेशन डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, फंडिंग आपके खाते में आती है, 30 से 100,000 है, फैमिली ऑफ फोर है तो अप टू 80,000 की फंडिंग आती है, $40,000 उसमें आज की डेट में ग्रांट है, जो रेस्ट $40,000 है 0% पे लोन है, जो कि आपने 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है आसान से किस्तों में, 15 साल में लौटा सकते हैं, शुरू में ब्याज सिर्फ 0%, बाद में ब्याज 2.5% का साल का, मतलब 40,000 का लोन अगर आपको ऑप्शनल आया है तो आपने सिर्फ 44,000 सिर्फ $4,000 ब्याज देना 15 साल में। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 2 से 3 घंटे आराम से कोर्सेज करें, इतने क्लाइंट्स कर रहे हैं, हजारों क्लाइंट्स कर रहे हैं, 8 साल हो गए, बाल सफेद हो गए, कोई कुंडी नहीं है इसके अंदर। नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, ग्रांट से सप्ते के बाद बंद हो रही है, नंबर 437-264-3175 437-264-3175 जब गवर्नमेंट यूक्रेन पे 60 बिलियन लगाती है, आप पे थोड़ा सा पैसा लगा रही, 2 बिलियन मिस ना करें, अगले कैंपेन गवर्नमेंट बंद कर रही है, 437-264-3175 437-264-3175 ऑफिस एड्रेस प्रॉपर ऑफिस 1,000 स्क्वेयर फीट का, 7 से 8 एम्प्लॉई है, कोई कुंडी नहीं है, कैफे में नहीं मिलते हम, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, यूनिट 212, आज भी आप आ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है सिर्फ इस वीक के लिए, 437-264-3175 437-264-3175 नुकसान 30 से 100,000 डॉलर का, कॉल करें 437-264-3175।
1: जी थैंक यू सरांश, ते बिल्कुल जी गलबात करो ते वधिया जानकारी तुसी लै सकदे हो, नंबर मैं एक बार फिर दे दिंदी हां 437-264-3175 ते गलबात हो सकदी है। ते लो जी साडे नाल इक कॉलर जुड़े आ, ते मैनू ना कईआं दे मैसेज भी वैसे आए जदों मैच चल रहा सी, जो खलील जी दा भी मैसेज आया कि जिहड़ी टीम है स्पेन दी बड़ी वधिया खेल रही है ना, सो साडे नाल जुड़ भी गए आ। ते खलील जी की हाल चाल तुहाडा?
2: सत श्री अकाल, मैं ठीक हूँ। इम्पोर्टेंट मैसेज का ये है कि गेम शुरू होने से 3 घंटे पहले बता दिया था आपको।
1: हाँ
2: मैं
1: जी बिल्कुल
2: ये बोलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे पहले कोई बंदा नहीं बता सकता, तो इसका मतलब ये है जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शंस है, कोई जाप्ता है, कोई जोडियाक साइन है, कोई नक्षत्र है। एक बेहतरीन नजूमी है मेरे पास, बड़े जबरदस्त देखने वाले हो, यहाँ नहीं रहते इंडिया में, तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझसे बोले पहले अर्जेंटीना जीतेगा। मैं बोला मुबारक भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। उसके आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हुई कि 79 चेंज हुए। मैंने कहा कोई खास बात नहीं, नहीं कुछ हुआ है स्टेडियम में, मुझे तो नजर नहीं आता, टीवी नहीं है मुझे, ये बताओ क्या हुआ। अच्छा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी आए, बस पनौती लग गई। अब अच्छा। नहीं जीतेगा अर्जेंटीना। मैं क्यों? तो बोले वो ढेर सारे उसमें लगाए हुए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हाँ स्पेन ने मेरा साथ नहीं दिया सी वॉर विच है, ये मेरे साथ ऐसा करता मैं इसका बदला लूंगा। बोले स्वयं परमात्मा नाराज हो गया। मैं ऐसा भी होता गुरुजी? बोले बिल्कुल क्यों नहीं होता, ये कायनात कौन चला रहा, तुम चला रहे ये ट्रम्प चला रहा या ऊपर वाला चला रहा? मैं बोला सारी चीजें ऊपर वाला चला रहा, जिस दिन वो नाराज हो जाए मच्छर की तरह मार देता किसी को भी। बोला तो बोले ऐसी हुआ है, अगर ये ना आता स्टेडियम में तो अर्जेंटीना जीतता था, मैसी वैसी खूब ठीक ठाक पैसे बनाता और ये चौथा मैच था उसका और उसको ढेर सारी इनाम इकराम मिलते। मैं बोला गुरुजी एक बंदे से ऐसा होता है? बोले हाँ एक बंदे से ही सब कुछ होता। बोले तो ये बड़े लोगों की बातें लोग बात नहीं समझते, मत समझे, मगर सब तो ये है ना कि ये आ गई बात बताए आप।
1: जी जी जी बिल्कुल, थैंक यू।
2: तो ये बात है, शुक्रिया,
1: अर्जेंटीना जितूगा। पर अल्टीमेटली उंज लगदा सानू भी सीगा कि स्पेन है ना जिहड़ा, स्पेन ने जिहड़ा मारका मार जाना। क्यों? क्योंकि ना कई बार जो हो रहा हुंदा ना कुदरत उस हिसाब नाल भी साथ दिंदी है, जो गाजा दे विच हो रहा है ना, ते कोई उन्हां दी बाह नहीं फड़ रहा, ते फिर जेड़ा उन्हां दा साथ दिंदा ते रब भी फिर उन्हां दा साथ दिंदा। कमलजीत भाजी हुण कुछ कहना आया भी। हां जी भाजी की हाल चाल? अगली भविखवाणियां भी करो कुछ।
3: नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, जो रियल है ना बाबा इधर का मैं जरूर मिलने जाऊंगा, मैं इधर गल कर रहा
1: मिलूंगा
3: जरूर, तुम दसूंगा भी कि भविष्यवाणी। थैंक यू,
1: ठीक है, थैंक यू।

कैसा म्यूजिक है, कैसी अंदाज है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नहीं मंगदा, ये जान भी मंगदा। कई बंदे कम्मा दे बिजी हो गए, कहते नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो टाइम नहीं है।

0: 16003015
1: नंबर जो है सब दोबारा दो एक बार
0: जी, नंबर
1: प्लीज।
0: है मेरा 416-400-3315। मैंने ऑलरेडी को 5-6 कॉल आई ने, तो जेडे दोस्त मैंने कॉल कर रहे ने,
1: जी जी
0: मैं जिवें प्रोग्राम खत्म होगा वापस कॉल बैक करके सारी
1: घर है
0: कर
1: बड़ा वधिया ना, कस्टम घर है जिवें तुसीं दस रहे हो, स्टोन दे च लाइटां लगियां इन्ना वधिया, ते 35-40 गड्डियां पार्किंग लग जांदी है, एरिया बहुत वधिया, जगह बड़ी है, 2 एकड़ जगह।
0: हाँ जी, 2 एकड़ लैंड हैगी,
1: पिछले
0: सिटी ऑफ वॉन दे अंदर हैगी।
1: हाँ, सिटी ऑफ वॉन दे च, वॉन च दा घर। हाईवे नेड़े उहदे जी,
0: इहदे बिलकुल मेन रोड जिहड़ा हैगा किंग वॉन रोड, उहदे उत्ते प्रॉपर्टी हैगी, और उत्थों जिहड़ी इक नवीं हाईवे बन रही है ना, आई थिंक 413 बन रही है, राइट।
1: हाँ जी,
0: और वो उसे किंग वॉन रोड तो वो जड़ी इंटर होएगी, तो यानी कि तुसी सीधा फिर ब्रैम्पटन मिसी सागा जाना है तो इस घर तुसी जा सकते हो। इस वक्त तो सिर्फ मेरे ख्याल 4 to 5 मिनट की ड्राइव 400 जड़ी वो हाईवे तो दूर हैगी।
1: लो जी, ये बड़ी नंबर दियो सर एक बार दोबारा।
0: हाँ जी, नंबर है 416-400-3315, 416-400-3315।
1: आ देख लो, मैं टिकट मास्टर खोल लिया सर।
0: जी जी,
1: आ देख लो, पंजाबी विरसा रेडियो टेलीविजन प्रेजेंट हंस राज हंस लाइव लाइव, ठीक है सर। किन्ने मिनट रह गए हैं जोईया साहब?
0: 12 मिनट,
1: 11 मिनट दे 59 सेकंड रह गए जी।
0: हाँ,
1: ये देख लो टिकटां, चक लो जाके, ये तुसी अज कहोगे भी हरजीत जी सानू तुसी दसता चंगा कीता, क्योंकि बाद च फिर कई बार औखा ज हो जाता काम, नाले बैंकट हाल होवे ना, असीं 50-100 बंदे एक्सट्रा वार्ड देने हुंदे आ, उत्थे चल जांदी गड्डी। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਲਓ।

0: शेर तो बहुत हो गया, लेकिन एक आध शेर मैं रिदम के साथ भी गा देता हूँ, दिक्कत के साथ।
1: किसी को अपना बना ले किसी पे।
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ
3: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ higherlicense.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
6: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
5: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
6: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
5: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी?
6: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दीयां चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
5: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
7: 32-55-80 98
5: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
7: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

0: don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji. 647-822-9607. 647-822-9607.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अंबड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लै

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473393521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
5: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करणगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
4: भाई इत्थे कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
5: कॉल करो 905-874-9878।
6: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
7: आज
8: रेडियो भी है।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
8: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा
10: ना किद्दा दी तैयारी?
11: ओ जी मैं रसोई नु निगाह मारी, देखिया ग्रोसरी मुक गई सारी, ते फेर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिच लई तैयारी।
10: मेनू पता है आज ग्रोसरी दे नाल नाल आऊ बारो खान पीन दी वारी, क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी।
11: जी हाँ, बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने, जिथे तुहानू मिलेगा फिश, गोट करी, तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा। फन सर्विस भी प्रोवाइड कर देने। बेस्ट स्टेशन ग्रोसर, इको प्लाजा विच तिन्नो ग्रोसरी, देसी स्टाइल पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट कैम्ब्रिज। कॉल 519-621-7774।
12: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
13: नहीं मैं मर जा उठे की होने।
12: GTA दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुने भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड डोमिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
14: धरती तो थोड़े समय तक सवर्ण सिंह टहना जी पंजाब दी खबरां लैके हाजिर होणगे। जे आपां गल करदे आं कल फीफा वर्ल्ड कप दा जो फाइनल होया, स्पेन अते अर्जेंटीना का बड़ा ही फसमा मुकाबला सीगा। बहुत ही गचागच भरिया होया स्टेडियम, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया। स्पेन के दर्शकों को मेरे वालों और साड़ी पूरी टीम वालों बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि उन्होंने बड़ा सोहना खेडिया, बड़ा सोहना खेडण के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड कप जितया। तो जे आपां इंडिया की क्रिकेट की टीम की गल करांगे, क्रिकेट के बेशक इंग्लैंड तो भारत 2-1 के नाल सीरीज हार चुकया गा, तो रोहित शर्मा ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की। बहुत सारे लोगों का यह मनना से कहना सीगा कि रोहित शर्मा का यह आखिरी मैच हो सकता, पर रोहित शर्मा ने मैच तो पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारिया अफवाहों के उपर स्टॉप लगा दिता, जिदे बार बार गल्लां कीतियां जा रही सी कि रोहित शर्मा ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, 2027 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਵੀਰ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਰ ਆਏ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ।

2200 सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स के नंबर ने। छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैंने हैं, नैक्सट फरमाइशी गाना तुम इंजॉय करो तो सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
1: ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ, ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट्स लई हर एक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने 10x10 feet तो लेके 40x100 feet दे तंबू ने टेबल्स ते कुर्सियां भी नाल लेके आउंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नूं बैंक्वेट हॉल वांगू बणाउंदे ने फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन LED ग्लो इन द डार्क बड़ी बनाईयां बार्स टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसीं रेंट कर सकदे हो अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नूं कॉल करो 647-999-2569 647-999-2569

0: क्या बात है। सो नंबर है अपना 9056733337 एंड PNJ रेनोवेशन वाला नंबर सुनो जरूर दिए। PNJ रेनोवेशन, अगर किसी ने भी A to Z कोई रेनोवेशन करवानी है, कोई भी घर की निक्की मोटी रिपेयर है, फ्रेमिंग, ड्राइवॉल, नवा फ्लोर, टायर इंस्टॉल करवानी है, बेसमेंट रेडी करवानी है, किचन बाथरूम की रेनोवेशन है, बहुत ही सॉलिड काम, बिल्कुल फ्री एस्टिमेट के लिए PNJ रेनोवेशन। कोई शॉर्टकट नहीं, बहुत रिलायबल प्रोफेसनल सर्विस है, तो नाल दी नाल फुली इंश्योर्ड WSIB इंश्योर्ड कंपनी है। तो नंबर है 4373180400, 4373180400, 437-318-0400। तुसी फोन घुमाओ तो करो गलबात भी, एको एक वन एंड ओनली साढ़े PNJ रेनोवेशन दे प्रशांत बाई दे नाल गलबात थोड़ी होगी। क्या बात है, गाना यही लाइए होर लाइए नहीं, तुसी वीकेंड ते बथेरा सुनया होना, वीकेंड दी पार्टियां ते साड़ी गली होंदी है, सो कुछ होर लाउने आ। नंबर वन ग्रोसरी स्टोर भाई एक क्विक इंडियन फ्रूट लैंड, इंडियन फ्रूट लैंड दी सैंडलवुड हरंटेरियो लोकेशन ते 25 सैंडलवुड पार्कवे वेस्ट ते एडी वड्डी सेल लग चुकी है कि सेल दा नां ही बिग सेल है। 10 pound शेर देसी स्टाइल आटा 699, इंडियन डेली बाइट्स एवरीडे राइस 8 pound 699, इंडिया गेट प्रीमियम राइस 10 pound 999, डीप सोना मसूरी राइस 20 pound 999, बंसी वाइट शुगर 15 pound 999, ब्राड द देसी घ्यो 1.8 kg 299 का बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, ब्लैक वाइट चना 4 pound 299, स्वर्णा सूजी 4 pound 299, दीप दा बेसन 4 pound 299, टमाटर 99 cents/pound, हैप्पी डेरी पनीर 399। क्या बात है, डीला ही डीला, 25 सैंडल रोड पार्कवे वेस्ट वाली लोकेशन ते डीला ने, सैंडल रोड एंड हरंटेरियो। हर एक इन्हां दे ग्रोसरी स्टोर दे नाल रेस्टोरेंट है, वेज थाली 499, वेज बर्गर 399, स्टफ्ड कुलचा 299 ईच, चना पटूरा 399। ये डीला 25 सैंडलवुड पार्कवे वेस्ट इंडियन फ्रूट लैंड ते। क्या बात है, सो मैं बीते दिन ही ना मतलब दो दिन लगातार एक अद्धा दिन छड़ के, खैर मास्टर सलीम साहब का एक तो शो होया वैनकूवर ते दूजा होया एडमिंटन, ते बल्ले बल्ले बल्ले क्या यार क्रेज लोगों च, कहिंदे कि सलीम साहब की परफॉर्मेंस देख के ना, चलो अपन पता कि किडे गुणी एक आर्टिस्ट ने, बट बड़े लोगों की मैं वीडियो देखी, कहते यार लाइव देख के तो यकीन ही नहीं होया कि बल्ले यार क्या परफॉर्मेंस, क्या गायकी, क्या सुरा, क्या आवाज। सो मास्टर सलीम हुण वैनकूवर एडमिंटन तो बाद हुण इस फ्राइडे नू मास्टर सलीम लाइव परफॉर्म कर रहे भी मिसी सागा च, मिसी सागा कन्वेंशन सेंटर। सो तुसी टिकटा नहीं लई ना, तुसी मिस करोगे एक बहुत ही प्यारी शाम, बहुत ही खास शो। सो मास्टर सलीम इस फ्राइडे नू मिसागा कन्वेंशन सेंटर, बड़ा टॉप द वेन्यू, कमाल दी प्रोडक्शन है। सो तुसी टिकटा नहीं लिया लाओ, तो जो तुसी देखोगे कि मास्टर सलीम साहब बिना माइक तो भी क्या सुरा लाउंदे आ ना, यह जे आर्टिस्ट नू वैसे माइक की भी लोड़ नहीं पैंदी यार, एडी कमाल दी आवाज़ है। सो टिकटा लई milnaticketsdotcom, तो कोई भी टिकटा की जानकारी मैं नंबर भी देना, तुसी कॉल करके भी टिकटा लै लो। इस फ्राइडे नो शो है 6477839873 ते कॉल करो मास्टर सलीम इस फ्राइडे 5926। हेलो
1: सत्या
0: सत श्रीकाल
1: प्रोग्राम
0: है बहुत सुंदर है ना, थैंक यू थैंक यू बहुत
1: धन्यवाद।
0: गाना सुनना सुना गाना
1: एक पुराना गाना है जी लखी बन जारे दा, खड़िया दे नलके तो भर के बाल्टी लिया
0: की दा गाना,
1: लखी बन जारा सिंगर है जी।
0: अच्छा लखी बन जारा,
1: हां जी।
0: अच्छा मैं कदे सुनया कि मैं नहीं
1: भाई, एदा है भी बहुत वधिया उदे सिंगर भी कई वारी लुके रहंदे ने बेचारे।
0: गल तुहाडी ठीक है, गाना केड़ा सीगा,
1: छड़िया दे नलके तो,
0: छड़िया दे नलके तो, ठीक है लब लेने हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे गल थोड़ी ठीक है, बड़े आर्टिस्ट ने यार जिन्हें चलो गाने बड़े वधिया आए होंगे बट कई बार नाम ही नहीं सुनया होंगे है।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
1: ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਜੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ
0: ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ, ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਖੈਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ $500 ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੈਂਟ ਉਹੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਸਿਰਫ $50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ ਆਪਣੇ ਓਇਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। royalperfumes.co royalperfumes.co 437-315-0701 ਨੰਬਰ ਹੈ, 4373150701 ਰੀਗਨ ਰੋਡ, ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ। ਦੋ ਪਰਫਿਊਮ ਖਰੀਦੋ, ਤੀਜਾ ਫਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਬਾਏ ਟੂ ਗੇਟ ਵਨ ਫਰੀ। ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ 437-315-0701 ਜੀ, 8930। ਹੈਲੋ
2: ਨਵੀ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਦਾਂ?
0: ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
2: ਵਧੀਆ
0: ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਐਲਬਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਗਾ ਦਾਂਗੇ।
2: ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
0: ਹਾਂ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
2: ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਆ।
0: ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਚ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋ ਫੇਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋ ਫੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋ ਫੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਮ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ।
2: ਅੱਛਾ,
0: ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੈ, ਹੈ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੋ ਫੇਡ, ਹਲਕੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਹੈ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਵਣਜਾਰਾ।

0: और किस्मत ने उनका इम्तिहान यहाँ तक ही नहीं लिया, 11 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत हो जाती है जिससे वो पूरे टूट जाते हैं, और उसके ही 2 साल बाद 2011 में उनकी भी ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। और ये जगजीत सिंह की कहानी आपको सिखाती है, उन्होंने शोहरत और दौलत तो बहुत कमाई लेकिन जिंदगी ने उन्हें बार बार गम ही दिए। जगजीत सिंह
1: सो मेनू बिल्कुल नहीं सी पता यार इहदे बारे, फिर मैं वीडियो देखी मैं कि यार इट्स किन्नी ट्रैजिक गल है। सो प्रोग्राम है पंजाबी ना, ते नंबर है अपना 905-673-3337 ते थोड़े लिए जगजीत जी का जो वीर ने रिक्वेस्ट किया सी ओही लाने आ। मास्टर ज्वेलर्स नूं याद रखो, ज्वेलरी की खरीदारी करनी है एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे कोर्नर ते 6231 है मेफील्ड रोड, मास्टर ज्वेलर्स ते जाओ, टॉप टॉप टॉप दी सोने दी खरीदारी एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे बिल्कुल कोर्नर ते। उस तो अलावा मिस्टर सिंह पीजे दी बैजा बैजा ते बल्ले बल्ले आ। मिस्टर सिंह पीजा डील तुसी देखो, सो मिस्टर सिंह पीजे ते मैगा डील है, 2 लार्ज पीजे 4 टॉपिंग ईच 4 फ्री डिप 2 लीटर कोक फ्री, क्या बात है, सिर्फ $40 च। नंबर है 905-500-4000 9055004000 9055004000। मिस्टर सिंह पीजे ते तुसी एक बार गेड़ा जरूर जरूर जरूर लगाओ। आ जाओ फिर सुन दिया।